एक्स का एफ एम कवा ओलंग एम तनुगुचु आउंगा प्रोग्राम हा हंगुए सगुजे से का के राधो के कबे तु का खै से पंग गुए खै क्वा राधो के निमुरु या वने तन सेवा पे नेखा एफ एम ओन तु तु कुए आउंगा ओलंग नवा गु सगुजे से का के राधो के कबे तु खै से पंग गु सिते गे ओलंग जि चान तन गु कम कले क्वा प्रोग्राम मु तु तु कुए मु का ओलंग नवा गु सगुजे से का के राधो dago sida ikawe tuwa kaisi mtani kuchu au ngo wala ngu saa nchima ka ke apurukha mga wa kwa nga da kwen nga hida ke kawada ngu da wala nga jichang tani kwa kama aliku apurukha ke maunga maso tani wita unga wala ngu.